0: వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్.
1: जी हाँ दोस्तों, भाई और बहनों नमस्कार. इसका प्रोग्राम आज हम आपका स्वागत करते हैं और मैं हूँ रजनी आपके साथ. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स, न्यू लिसनर्स, ओल्ड लिसनर्स एंड एवरीवन हु हैव जस्ट जॉइंड अस ऑन द प्रोग्राम दिस मॉर्निंग. 98.1 शेयरिंग द वर्ल्ड विद यू और मैं हूँ रजनी आपके साथ. बहुत प्यारा दिन है, लेकिन जी हाँ, बहुत बारिश हो रही है. बहुत पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से शायद बहुत बारिश हो रही है. लेकिन दोस्तों, अगर आप ड्राइव करते होंगे, इफ़ यू आर ड्राइविंग एनीवेयर ऑन द रोड, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड. लेकिन ज़्यादा अपना ध्यान रखिए और हमारे स्टेशन को ट्यून कीजिए एंड लिसन इन टू आवर प्रोग्राम्स. वी हैव सम लाइंड अप अ वेरी ब्यूटिफुल हनुमान चालीसा सॉन्ग फॉर यू ट्यून. इट्स अ प्रेयर. लेकिन दोस्तों, आज का दिन बहुत प्यारा दिन है और हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त 98.1 शेयरिंग द वर्ल्ड विद यू और इस वक्त ये हनुमान चालीसा को सुनिए, विच इज़ ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, नेवर बिन हर्ड बिफोर. बहुत बहुत प्यारा आवाज़.

0: जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जो हनुमान का, इट्स हनुमान इज़ अ हिंदू डेटी ऑफ डिवोटी ऑफ द हिंदू गॉड रामा. ही इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द रामायण. अकॉर्डिंग टू द शैव ट्रेडिशन, ही इज़ ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ शिवा. जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा प्रेजेज द पावर एंड द अदर क्वालिटीज ऑफ हनुमान, इंक्लूडिंग हिज स्ट्रेंथ, करेज, विजडम, सेलिबसी एंड डिवोशन टू लॉर्ड रामा. नमस्कार, सत श्री अकाल, केम चो, गनी खम्मा. इस वक्त 9:10 हो चुके हैं, एंड हुएवर हैज़ जॉइंड अस ऑन आर प्रोग्राम दिस मॉर्निंग, न्यू एंड ओल्ड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. एंड ऑल्सो दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि हमारा रेडियोथॉन चल रहा है इस वक्त, और अगले हफ्ते एक हफ्ता बचा है. अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ उम्मीद रखते हैं हम आपसे जो कॉन्ट्रीब्यूशन्स मिलेंगे. लेकिन यही नहीं कि रेडियोथॉन में बहुत सारे रैफल्स और प्राइजेस भी है. अगर आप $50 के ऊपर डोनेट करेंगे तो जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली कॉल द स्टूडियोज एंड गिव अस योर कॉन्ट्रीब्यूशन, सो वी कैन बी ऑन एयर विद यू एज लॉन्ग एज वी कैन. तो दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ देंगे. लेकिन इस वक्त सुनिए हमारे प्रोग्राम और हमारे साथ दीजिए
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस.

जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बहुत प्यारा गाना, वेरी रोमांटिक ड्यूट. और जी हाँ, यही श्रेया घोषाल की आवाज़ में शी हैज़ टाइड अप विद एड शीरन एंड ब्यूटीफुल ट्यून, रोमांटिक ट्यून बाय बोथ ऑफ देम. कैसा लगा आपको? तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको याद दिलाएंगे. याद दिलाने की भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते इट्स मदर्स डे. तो शायद आप लोग ने बहुत सारे प्रेपरेशंस किए हैं एंड टाइंग अप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टू एन्जॉय मदर्स डे. हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर बारिश हो तो ज़्यादा दूर मत जाइए एंड ट्राई टू स्टे इंडोर्स इफ़ वी हैव अ लॉट मोर रेन कमिंग इन. क्योंकि इतने दिनों से बारिश जो हो रही है अभी तक रुका ही नहीं, लेकिन प्यार का मौसम है दोस्तों. और इस वक्त इस गाना को सुनिए, बहुत प्यारा गाना.

बहुत प्यारा गाना इस वक्त दुआ, जो जिनकी आवाज़ है अरिजीत सिंह, नंदिनी सिरकर और शेखर रवजियानी। और जी हाँ दोस्तों, इस शंघाई फिल्म 2012 का फिल्म था और द म्यूज़िक संगीत ने दिया था विशाल शेखर ने। बहुत बढ़िया ड्यो, दे आर अ ग्रेट टैलेंटेड ड्यो दैट कंपोजर्स म्यूज़िक, कंपोजर्स राइटर्स लिरिसिस्ट एंड म्यूज़िक डायरेक्शन करती हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बहुत प्यारा गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, और किशोरदा हमको याद रखेंगे हमेशा, ये बहुत प्यारा गाना आपके लिए।

0: ताल में कुछ काला है।
1: काला?
2: तुम्हारे ख्याल में ये कौन गा रहा है?
0: अरे ये ये तो मेरा भोला है, वो देख सामने खड़ा।
2: नहीं नहीं, ये तो विद्यापति है।
0: विद्यापति? कौन विद्यापति?
2: मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत बड़ा कवैया है।
0: I don't believe it, it's impossible. You have to believe it. चलो मेरे साथ।

0: Yeah, new opportunities to nominate. Know a local legend making a real difference? A volunteer who generously gives their time and talent. An entrepreneur creating economic opportunities for Queenslanders, or a woman who helps other women build economic security. Maybe it's an initiative that builds understanding between cultures, or a small organization supporting multicultural communities. Or is it someone who has dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland? Get them the recognition they deserve. Nominate now for a Multicultural Queensland Award. Get amongst it at www.qrd.gov.au/MQA.
1: जी हाँ दोस्तों, ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में 1968 का फिल्म था पड़ोसन, और बहुत बढ़िया फिल्म थी. इट वाज फैंटास्टिक कॉमेडी जिसमें महमूद, सुनील दत्त और सारा बानो ने किरदार किया था, और संगीत ने दिया था आर डी बर्मन. लेकिन सबसे बढ़िया जो किरदार किया था वो किशोर कुमार का ही था. वो ही सच अ वर्सटाइल एक्टर, और ये ही नहीं, of course he is one of the greatest singers of our film industry. To Kishore Kumar ki awaaz Padosan film tha 1968 mein. Ji haan dosto, ek aur pyara gana Kishore Kumar ki awaaz mein aapke liye. नौ बजकर 35 मिनट हो चुके हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में. 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं हूँ रजनी, आपके साथ 10 बजे तक दूंगी. और दोस्तों, कहीं जाएगा मत, एक और गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, और आपका सब स्वागत है

यह संदेश ब्रेस्ट स्क्रीन क्वींसलैंड की ओर से है। स्तन जांच हर दो वर्ष में कराने की सलाह दी जाती है और ये 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नियमित स्तन जांच आपका जीवन बचा सकती है क्योंकि इससे स्तन कैंसर की शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सकता है। हम 40 वर्ष की महिलाओं तथा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी मुफ्त जाँच उपलब्ध कराते हैं। आपको डॉक्टर की रेफरल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होने पर अनुवादक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट के लिए 1320 पर कॉल करें या breastscreen.qld.gov.au पर बुक करें। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन द्वारा अट स्टेशन प्रायोजक।

जी हाँ दोस्तों, इस गाना जो आपने सुना था फिल्म घर का था, एंड 1978 का फिल्म, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया फिल्म। इट वाज अ वेरी वेरी वेल रिसीव्ड फिल्म इन इंडिया 1978, क्योंकि उस वक्त इट वाज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, जो रेप केस था, एंड इट हैपेंड इन बैंगलोर। आज के ज़माने में बंगलुरु कहते हैं, लेकिन 1978 इट वाज कॉल्ड बैंगलोर, और वहाँ पे एक बहुत भयानक रेप केस हुआ था। एंड उससे पहले भी बहुत सारे केसेस हो रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ना पुलिस की ओर से, ना गवर्नमेंट की ओर से। और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस स्टोरी लाइन पे, रियल स्टोरी पर ये फिल्म बनाए थे। इट वाज अ वेरी ग्रेट फिल्म, वेरी वेल डायरेक्टेड, और संगीत ने दिया था आर डी बर्मन, अगेन वंस अगेन किशोर कुमार की आवाज़, एंड वेरी गुड मूवी। अगर हो सके तो आप देखिए, इट्स स्टिल अवेलेबल ऑनलाइन। हाँ दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जिन्होंने ट्यून किए हमारे साथ, हुए जस्ट जॉइंड अस, दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स अंटिल 10 AM। मैं हूँ रश्मि, आपके साथ 98.1, शेयरिंग द वर्ल्ड विद यू।

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: जी हाँ, 10 मिनट रहा है हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने के लिए, लेकिन जाने से पहले हम ज़रूर एक और बार उन सारे माओं के लिए विश करना चाहती हूँ, विशिंग ऑल दोज मदर्स आउट देयर एंड फादर्स, क्योंकि जब भी माँ नहीं होती है घर में तो फिर बाबा को ही देखना पड़ता है, तो इट्स द फादर्स ऑल्सो आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रेन. तो दोनों के लिए, फॉर द मदर्स एंड द फादर्स, विशिंग द मदर्स अ वेरी स्पेशल हैप्पी मदर्स डे नेक्स्ट वीकेंड. लेकिन दोस्तों, हम अगले हफ्ते इसी स्टेशन पर, इसी समय पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे सपोर्ट करेंगे इस साल की रेडियो टॉन के लिए, एंड डिग डीप इन टू योर पॉकेट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स छोटा सा जो हिंदी ग्रुप है 4EB पर. We look forward to receiving your contributions, दोस्तों. अगर आपकी सपोर्ट नहीं है तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं. तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे. सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन कहीं जाएगा मत. एक और बहुत प्यारा गाना नीरज श्रीधर की आवाज़ में.

जी हाँ दोस्तों, ज़रा हटके से ये गाना एसडी बर्मन की आवाज़ में, गाइड फिल्म 1965 का। लेकिन दोस्तों हमारा जाने का वक्त हो चुका है और हम आपसे ज़रूर अगले हफ्ते मुलाकात होगी इसी स्टेशन पर इसी समय पर। खैरियत रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Enjoy the week and looking forward to celebrating Mother's Day next weekend. तो दोस्तों इस वक्त हम आपसे अलविदा कहते हैं। सुनते रहिए 98.1, sharing the world with you.